आत्मनो अन दिनो मोहे आही के असा कृपा जल देहे नानक सारंग को होए जाते तेरे नहीं वसा।

सर्वं हन्ता सर्वं गन्ता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्म सर्वं धर्मं सर्वानुक्ता सर्वामुक्ता ऋषावल सांत्वा प्रसाद नमो दर्कनासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते प्रमातं परमाते सदा सर्वसाते अगाध स्वरूपे निर्भाव भूते अनंगी अनामे तरभंगी तरकामे नरभंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पुत्रा न पुत्रा न सत्रा न मित्रा न ताता न माता न जाता न पाता निरसाकं शरीका मितो मीका सदावं प्रभाह अजाह अजाह भगवती शांत्वा प्रसाद के जाहर हजूर हैं के आजर हजूर हैं मेसर सलाम है समस्तला कलाम है के साहेब दुमाग हैं के संजराग हैं के कामला करीम हैं के राज करीम है के रोजी देहंद है के राज करहिंद है करीम कमाल हैं के संजमाल हैं गनी मुल्क राज हैं गरीब नवाज हैं हरीफुल सिकन है रासल फिकन है कलंकं बरणास हैं समस्तल निवास हैं गंजुला गनीम हैं रजाय करहीम है समस्तला जुबा हैं के साहब किरा हैं के नरकं बरणास हैं बहस्तल निवास हैं के सर

विबुधे समर्थन स्वरूपे कुकर्मं वाराणसी स्वधर्मं विबुधे सदा सहितानंद सत्रंग वाराणसी करीमल कुनिंदा समर्थन निवासी अजाए बबुदे गजाए बगनी में हरियं करियं करीमल रहीमे चतर जकर वर्ती चतर जकर भुगते स्वंभव शुभंग सर्वदा सर्वजुगते

करे लटकायो, कहूँ लख्यो हर बाची दसा मैं, कहूँ बशांको सी सुनवायो, को बतान को बूझत है बशकू मेरे तान को बूझन तायो।

0: जाने उदारी
1: चरण करत नहीं तरै
0: हर को नाम कोट पाप पर हर
1: मुख नाम जपो मन मेरे
0: नानक पावो सुख कनेरे
1: को राजा दुखिया
0: हर का नाम जप्त होए सुखिया
1: करोरी बंद न पर
0: हर का नाम जप्त निस्तर

0: शरीर कटावे
1: तो भी होमे मैल न जावे
0: हर के नाम संसार कछ ना है
1: नानक गुरमत नाम जपत गत पाए
0: मन कामना तीर्थ दे छुटे
1: लग कुमान हमारे
0: सोच करे दिन सर रात।

0: सुख पावे हर हर जस कहत।
1: प्रसाद सगल छिद्र ठाके
0: मन सरनी पर ठाकर प्रभु ताके।
1: प्रसाद तुझको न भूले।

0: परमगत पाव है
1: जय पर सासु सहज समावे
0: ऐसा प्रभ त्याग वरकत लागो
1: गुर प्रसाद नानक मन जागो
0: जय पर सातु पर

0: सतसंगमुख उज्जल होत
1: साध संग बल सगली कोत
0: साध के संग मिटे अभिमान
1: साध के संग प्रगटे सो ज्ञान
0: साध के संग बुझे प्रभ नेरा
1: साध संग सब होत नवेरा
0: साध के संग पाए नाम रतन
1: साध के संग एक ऊपर जतन
0: साध की महिमा वरने कौन पुरानी
1: नानक साध की शोभा ब्रह्मे समानी
0: साध के संग अगोचर मिले
1: साध के संग सदा पर खुले
0: साध के संग आवे बस पंचा
1: साध संग अमृत रस पहुंचा
0: साध संग हुए सबकी रेन
1: साध के संग मनोहर बैन
0: साध के संग न कतहु तावे
1: साध संग स्थित मन पावे
0: साध के संग माया ते पैन
1: साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न
0: साध संग दुश्मन सब मीत
1: साधु के संग महापनीत
0: साध संग कस्यो नहीं बैर
1: साध के संग न बीगा पैर
0: साध के संग

0: प्रभु बने आई।
1: साध के संग न कब भूत आवे,
0: साध के संग सदा सुख पावे।
1: साध संग वस्त अगोचर लहे,
0: साधु के संग अजर सहे।
1: साध के संग वसे स्थान ऊंचे,
0: साधु के संग महल पहुंचे।
1: साध के संग दृढ़े सब धर्म,
0: साध के संग केवल पार ब्रह्म।
1: साध के संग पाए नाम निधान,
0: नानक साधु कह करवान।
1: साध के संग सब कुल उधार,
0: साध संग साजन मीत कुटुंब सारे।
1: साधु के संग थो तन पावे,
0: जिस तन ते सब को बरसावे।
1: साध संग धर्म राय करे सेवा,
0: साध के संग शोभा सुर देवा।
1: साधु के संग पाप पलायन,
0: साध संग अमृत गुण गायन।
1: साध के संग सर्व थान गम,
0: नानक साध के संग सफल जम।
1: साध के संग नहीं कछु काल,
0: दर्शन पेट धोत निहाल।
1: साध के संग कलुखत हरे,
0: साध के संग नरक पर हरे।
1: साध के संग इहां उहां सहेला,
0: साध संग विशरत हर मेला।
1: इच्छे सोई फल पावे,
0: साध के संग न बिरता जावे।
1: हर ब्रह्म साध रिद बसे,
0: नानक उतरे साध सुन रसे।
1: साध के संग सुनो हर नाओ,
0: साध संग हर के गुण गाओ।
1: साध के संग न मन ते विसरे,
0: साध संग सर पर निस्तरे।
1: साध के संग लगे प्रभ मीठा,
0: साधु के संग कट कट बीठा।
1: साध संग पे आज्ञाकारी,
0: साध संगत रही हमारी।
1: साध के संग मिटे सब रोग।

0: ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप,
1: जैसे जल में कमल अलेप।
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्धोक,
1: जैसे सूर सर्प को सोख।
0: ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट समान,
1: जैसे

0: ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला
1: जैसे मैल न लागे जला।
0: ब्रह्म ज्ञानी के मन होए प्रगास
1: जैसे तारु पर आकाश।
0: ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सत्तर समान
1: ब्रह्म ज्ञानी के नाही अभिमान।
0: ब्रह्म ज्ञानी ऊंचते ऊंचा
1: मन अपने है सब ते नीचा।
0: ब्रह्म ज्ञानी से जन पहे
1: नानक जिन प्रभ आप करे।
0: ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना
1: आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना।
0: ब्रह्म ज्ञानी की सभी ऊपर मया
1: ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया।
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी
1: ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी।
0: ब्रह्म ज्ञानी बंधन

0: करे प्रव्याप,
1: ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप,
0: ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ पागे पाइये,
1: ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइये,
0: ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर,
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर,
0: ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाही,
1: ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माहे,
0: ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद,
1: ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश,
0: ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाय अधखर,
1: ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकर,
0: ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने,
1: ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने,
0: ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार,
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार,
0: ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता,
1: ब्रह्म ज्ञानी सजीवे नहीं मरता,
0: ब्रह्म ज्ञानी मुक्त युक्त जी का

0: कठोर
1: कई कोट अपेक्षा तुम निकोर
0: कई कोट पर दर्व को हिर है
1: कई कोट पर दुख न कर
0: कई कोट माया शर्मा है
1: कई कोट पर देश परमा है
0: जित लावो तित लगना
1: दान करते की जाने करता रचना
0: कई कोट सिद्ध जति जोगी
1: कई कोट राजे रस भोगी
0: कई कोट पंखी सर्प पाए
1: कई कोट पाकर मृग निप जाए
0: कई कोट पवन पानी बैसंतर
1: कई कोट देश को मंडल
0: कई कोट शशि सुनिकेतर
1: कई कोट देव दान इंद्र शिर शतर
0: सकल समग्री अपने सूतार
1: नानक जिस जिस भावे तिस तिस निस्तार
0: कई कोट राजस्थान साकत
1: कई कोट वेद प्राण सिमरत हर शास्त्र
0: कई कोट किए रतन समुंद
1: कई कोट नाना प्रकार जानत
0: कई कोट किए चर जीवे
1: कई कोट गिरी में स्वरंती
0: कई कोट जख्य किनर पिशाच

0: पार ब्रह्म लहंते
1: दर्शन प्रप्यास
0: तिनको मिलियो प्रभु अविनाश
1: श्रीकुट मांगे सत्संग
0: पार ब्रह्म तिन लागा रंग
1: होय आप सो प्रसन्न।

0: जब लग मोह मगन संग माए
1: तब लग धर्म राय देश जाए
0: प्रभु कृपा ते बंधन टूटे
1: गुर प्रसाद नानक हो छूटे
0: सेंस कटे लख क्यों उठतावे
1: तृप्त नावे माया पाछे पावे
0: अनक भोग बिख्या के करे
1: मैं तृप्तावे खप खप मरे
0: बिना संतोख नहीं

0: दुख नारजा घटे
1: संत के दुखन जमते नहीं छूटे
0: संत के दुखन सुख सब जाए
1: संत के दुखन नरक में पाए
0: संत के दुखन मत होए मलीन
1: संत के दुखन शोभा तेहीन
0: संत के हते को रखे ना कोए
1: संत के दुखन थान प्रष्ट होए
0: संत कृपाल कृपा जे करे
1: नानक संसार निंदक भीतर है
0: संत के दुखन ते मुख पवे
1: संत के दुखन काम जो लवे
0: संतन के दुखन सर्व जोन पाए
1: संत के दुखन त्रिग जोन करमाए
0: संतन के दुखन तृष्णा में जले
1: संत के दुखन सब को चले
0: संत के दुखन ते सब जाए
1: संत के दुखन नीच न जाए
0: संत दुखी का था को नाए
1: नानक संत पावे ता होए विगत पाए
0: संत का निंदक माहते पाई
1: संत का निंदक घंटे करना पाई
0: संत का निंदक मास त्यारा
1: संत का निंदक परमेश्वर मारा
0: संत का निंदक राज से हीन
1: संत का निंदक दुखियार हीन
0: संत के निंदक को सर्व रोग
1: संत के निंदक को सदा वियोग
0: संत की निंदा दुख में दुख
1: नानक संत पावे ता उसका भी होए भोग
0: संत का दुखी सदा अपवित्त

0: में मरे
1: संत की दुख ना सुख ते डरे
0: संत के दुखी को ना ही ठाओ
1: नानक संत पावे ता लय मिलाए
0: संत का दुखी अद्वीच ते टूटे
1: संत का दुखी किसे काज ना पहुंचे
0: संत के दुखी को ध्यान फरमाइए
1: संत का दुखी उजड़ पाइए
0: संत का दुखी अंतर ते थोथा
1: ज्यों सांस बिना मेरे तकी लोथा
0: संत के दुखी की जड़ किस ना है
1: आपर वीरिया पे ही खाए
0: संत के दुखी को अवन राखण हार
1: नानक संत आवे ता लय हवार
0: संत का दुखी यूं बिल लाए
1: ज्यों जल बिनु मछली तड़पाए
0: संत का दुखी भूखा नहीं राजे
1: ज्यों पाव की दर नहीं त्रापे
0: संत का दुखी छूटे अकेला
1: ज्यों बुआड़ ते खेत माए दहेला
0: संत का दुखी धर्म ते रहत
1: संत का दुखी सद मिथ्या कहत
0: कीर्त निंदा का तोर ही पया
1: नानक जो तिस पावे सोई तिया
0: का दुखी बिगड़ रूप हो जाए
1: संत के दुखी को दरगह मिले सजाए
0: संत का दुखी सदा सहकाइए
1: संत का दुखी ना मरे ना जिवाइए
0: संत के दुखी की पूजे ना आसा
1: संत का दुखी उठ चले निराशा
0: संत के दुख ना दृष्टे कोए
1: जैसा पावे तैसा कोई होए
0: या कीर्तन बेटे कोए
1: नानक जाने सच्चा सोए
0: सब कट तिसके यो करने हार
1: सदा सदा तिसको नमस्कार
0: की उस्तत करो दिन रात
1: इसे ते

0: केवल तनी
1: तबन मुक्त को किसको गनी
0: जब कह अगम पार
1: तब नरक स्वर्ग को कौन उतार
0: जब निर्गुण प्रभु से सुभाए
1: तब सिर सख्त कहो के तटाए
0: जब आपे आप अपनी ज्योतर
1: तब कवन निडर कवन कत डर
0: आपन चलत आप करने हार
1: नानक ठाकर अगम पार
0: अविनाशी सुख अपने आसन
1: तह जन्म मरण को कहा विनाशन
0: पूर्ण करता प्रभु सोए
1: तब जम की त्रास कहो किस होए
0: जब गत गोच प्रभु का
1: तब चित्र रूप के पूछत लेखा
0: जब नाथ निरंजन गोचर गादे
1: तब कौन छुटे कौन बंधन बाते
0: अपने आप आप ही चर्जा
1: नानक अपन रूप आप ही पर जा
0: यह निर्मल पुरख पुरख पत होता
1: तह बिन मैर कहो क्या होता
0: यह निरंजन निरंकार निर्वाण
1: तह कौन को मान कौन अभिमान
0: केवल जगदीश
1: ऐसा सिंगल

0: सुन कत मै
1: पानी प्रभु की सबको बोल
0: आप डोल न कहूँ डोल
1: सर्व कला कर खेल खेल
0: हो न पाइये गुणे हो
1: सर्व तो

0: होई।
1: आप सत किया सब सत
0: इस प्रभु ते सगली उत्पत्त
1: इस पावेता करे विस्तार
0: इस पावेता ही